0: India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है.
0: From infrastructure

0: نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینند. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
1: The rhetoric is hardening, the military exchanges are widening, and fears of a broader regional conflict are growing by the day. West Asia is once again on the edge. The region now waits to see who makes the next move. Bureau Report, NDTV World.
2: All right, let's switch tracks this morning to the crisis inside the Trinamool Congress that appears to be deepening by the day. You know, in just 72 hours, the TMC has suffered two significant setbacks in the Rajya Sabha, with both Sukhendu Sekhar Ray and Sushmita Dev resigning from the upper house and the party. In the Lok Sabha, the number war continues. Rebel leader Kakoli Ghosh Dastidar's camp is now indicating that the dissident strength may have risen further, with fresh speculation around names like Shayoni Ghosh and Mala Roy, also Yusuf Pathan and even Shatrughan Sinha. The Mamata Banerjee camp, however, insists that these claims are exaggerated, they're politically motivated, describing them as a BJP-driven narrative. And amid this tussle over numbers, a section of the rebel MPs has learned to have met Shuvendu Adhikari once again at Union Minister Bhupinder Yadav's residence. We've got crucial political reactions lined up for you this morning. Listen in.
3: I'm entitled to think for myself. I mean, yes, I seem like an opportunistic person who's, you know, left her at the worst time. I admit that it's the worst time to leave her. But the question is that I also have to save myself from a crisis that I am heading towards with such uncertainty. Timings is everything in politics, so it's a bad time for her. And I felt that not resigning now may turn into a bad situation for me.
4: I think 20 peoples means a lot. If it is a opposite, 8 peoples are there, then you can say they are gaddar, they have a personal agenda, they want washing machine, whatever you can tell us. But when it's a opposite, it are 20 is... 20 years are there. That means everyone has a problem. Everyone has hesitation, and everyone has same thought process.
5: Agar Sukhendu Sekhar Rai istafa de sakte hai, agar Sushmita Dev istafa de sakte hai, to aap log Trinamool Congress ka symbol mein jeet kar, Mamata Didi ka candidate hoke jeet kar. तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं?
6: पॉलिटिक्स है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनामय शिल्प है। तो कल कुछ भी हो सकता है। हम लोग चाहता है राहुल गांधी ओनली द वॉइस फॉर द डाउनट्रोडन पीपल, फॉर द सफरर पीपल, उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। और ये बात को जो लोग मान लेगा, उसके लिए हमारा डोर इज ओपन। और जो टेंटेड है, बात हो रहा है ना, जो गलत आदमी है उसको क्या कांग्रेस लेगा? जिसका दम नहीं है वो कांग्रेस में नहीं आएगा। जो गलत आदमी वो वॉशिंग मशीन ढूंढेगा।
7: जब बंगाल में कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए सारे संसाधन को ये इस्तेमाल कर रहे थे बंगाल में, हमारे पार्टी की एमएलए से लेकर पंचायत तक जितने हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे थे, सबको तोड़ो और कांग्रेस को खत्म कर दो, टीएमसी में शामिल कराओ।
8: 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है, ये लोग स्पीकर को आके ठी दे देंगे। असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग है, वहाँ भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मार्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मार्जर, जहाँ तक हमारे सवाल है और जहाँ तक मेरा जानकारी है, तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है।
9: मैं एक ही बात कहूंगा, अहंकार से राजनीति नहीं होती। मैं बंगाल कई बार गया हूं, देखा है वहां पर जो अत्याचार हुए हैं, वहां की जनता तिल तिल परेशान थी। और आज जब जनता का गुस्सा फूटा तो देखिए ममता जी की पार्टी बिखर गई। तो अहंकार और भ्रष्टाचार के बिना पर जो राजनीतिक इमारत खड़ी होती है वो गिरती भी है, तो आप देख रही हैं। अब सुना है वो कांग्रेस के दरवाजे पे जा रही हैं, उनको शुभकामना, जो करना है करें।
10: अगर ये खबर सच है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस कांग्रेस को छोड़ करके ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी और आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। और माँ माटी और मानुष के नारे से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, अब वो पार्टी जो है कांग्रेस के विचारधारा के साथ जो है आत्मसमर्पण कर रही है।
11: टीएमसी वाला कोई नहीं रहने वाला, टीएमसी खत्म हो गया। टीएमसी का जो एक समय जैसे टीएमसी का जैसे कि अहंकार था, हर जगह कब्जा करने का कोशिश किया, बंगाल को खत्म कर दिया, जंगल राज महाजंगल राज बनाया था। आज जनता ने महाजंगल राज से जनता आज ये भरसा का एक सरकार बनाया भारतीय जनता पार्टी का। जो इसका अहंकार, इसका जितना जो एक समय कब्जा करने का जैसे कोशिश था वो खत्म हो गया। तृणमूल कांग्रेस दिन के दिन आप देख रहे हैं खत्म होने जा रहा है और समाप्त होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस में दो लोग रहेंगे, एक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी।
2: Meanwhile, Sushmita Dev, a pillar of the Trinamool Congress in Assam, who quit both the party and her Rajya Sabha seat, justified her action, saying she is entitled to think for herself. She said as a public figure, she would accept being judged for it, and asked if she would consider joining the BJP. She said, never say never. In this exclusive interview with Padmaja Joshi, Sushmita Dev had given the current situation and said that her move will be seen as opportunistic. Before I let any further details out, listen in.
12: Yesterday, Kirti Azad and Kalyan Banerjee both did a press conference. They didn't name you, but they said that all the MPs who are leaving, these are opportunists. These are people who are deserting a sinking ship. And in his words, I'm quoting Kirti Azad, ye log kaun the? Inko kahin se nahi utha karke राज्यसभा लोकसभा में भेजा गया है, एंड आज जब दीदी को जरूरत है, देन दे आर लीविंग हर साइड, दैट यू आर अबैंडनिंग दीदी इन टाइम ऑफ अ क्राइसिस।
3: आई वॉच द सेम प्रेस मीट इन विच ऑनरेबल एमपी कल्याण बनर्जी एंड कीर्ति आजाद जी वो देयर, एंड आई हर्ड कल्याण बनर्जी, आई डोंट नो बट मच इफ यू अंडरस्टैंड बंगाली, बट आई एम अ बंगाली, ही वॉज प्रेजिंग Shukhendu Shekhar Rai, saying he's done the right thing. He's left the party. He's left the seat. So the Lok Sabha MP should do the same. So I don't think Kalyan Banerjee's press meet is targeted towards what I have done. I mean, I watched it very clearly. That's what he said. So they should also take a stand one way or the other. What is it they want to say?
12: Because, you know, today when you talk
3: and,
12: about
3: it. And the other thing is the...
12: Yes, go on.
3: Has anybody from Trinamool reacted on my leaving?
12: Not yet. No, they haven't. But I think right now there is so much unfolding that they are still going to bide their time.
3: Exactly.
12: Maybe they are waiting for some other of your colleagues.
3: See, that's what I'm...
12: Sabha, we are hearing 9 out of 30 are waiting to resign after you.
3: See, Padmaja, I'll tell you something. That today... Everybody has the right to have a change of mind because circumstances change in politics. Okay, the same people, okay, let's take a recent example. In 2026, Congress gave 294 candidates in the West Bengal Assembly election against the Trinamool. Results came out on 4th. Of May, and on 8th of June, they are back together again. So they've also had a change of mind. I'm just saying. Okay, the same we have seen in the past when Atal Bihari Vajpayee Ji was the Prime Minister. that Mamta ji, for a package

0: रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। यह सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया।
1: ऑलराइट, लेट्स स्विच ट्रैक्स नाउ। Even as the Congress government in Karnataka grapples with internal unease over cabinet portfolios and also administrative responsibilities, the political battle outside the government is intensifying. The BJP has now leveled serious allegations, with Karnataka leader of opposition R. Ashoka claiming the Congress government has presided over what he calls a 39,000 crore rupee garbage scam, alleging irregularities in the tendering process and kickbacks that are running into thousands of crores. Chief Minister D.K. Shivkumar has turned the attack back on the opposition though, accusing both the BJP and previous governments of nurturing what he describes as a garbage lobby during their years in power. He also took a swipe at the BJP, claiming that past administrative

0: politics that they are doing. As of now, they have not decided who to join the party, whether they will go to the Bharatiya Janata Party. But sources clearly indicating to us that they will be soon joining the Bharatiya Janata Party as far as the Rajya Sabha MPs are concerned.
1: Yes, absolutely. What we are hearing is that there are more MPs who could also join the camp of Kakoli Ghosh. Kakoli Ghosh is still here in the national capital. There are many MPs, in fact, who have gone back to their own state, that is West Bengal. But there are many, in fact, who are still here. And in fact, while speaking to them, they also, in fact, mentioned that the top brasses of TMC have been continuously trying to get in touch with them. They are trying to retain them in a way that they should come back. Not just that, but also, in fact, multiple times calls were made to these MPs and they were reminded about the kind of about the kind of affection they have with Mamata Banerjee, about the kind of party has given to them. But the MPs, in fact, were very much adamant. They stated, in fact, while speaking to us, they also stated that they have made their mind that they are going to stay all together and they are going to form a separate group. And then after that, they have also written a letter as they claim that they have more than 20...
2: बनी मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट हम लोग नहीं पाए. नॉर्थ बंगाल का भी सीट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ. इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है. मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी से भी इस्तीफा.
3: क्या ममता बनर्जी से आपकी बातचीत हुई?
2: नहीं
4: नहीं, मतलब कोई रिजल्ट ही एक
3: कोई नाराजगी थी अभी कुछ कोई नाराजगी थी ममता बनर्जी.
2: मैं दूसरा कोई टॉपिक में बात नहीं करना
3: चाहता. ममता बनर्जी से कोई नाराजगी थी?
2: नहीं नहीं, मैं दूसरा कोई टॉपिक
5: में बात नहीं करना चाहता. क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मर्जर होगा बीजेपी के साथ में?
2: उस समय को इनका इंतजार कीजिए. मेरा जो देखिए, मेरा उम्र ज्यादा नहीं है. इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या करना है नहीं, वो समय उनके अंदर. समय के इंतजार कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए.
3: और भी कोई सांसद है आपके साथ?
2: मुझको मालूम नहीं.
4: टीएमसी में क्या दिक्कत है? टीएमसी में क्या दिक्कत है?
2: बार बार बोला ना, ये जो असेंबली इलेक्शन का जो मैंडेट है ये तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, बीजेपी के पक्ष में है. ऑब्वियसली गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक अगर चाहता है कि यह पार्टी को जिताए, इसको मैंडेट ना मिले. इस जनाधार को देखते हुए, जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, सब चीज को देखते हुए मेरा भी पर्सनल डिसीजन हुआ कि नहीं.
3: लेकिन आपको क्या सोच? आप ये सोच रहे थे सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी छोड़ के चलते हैं?
2: मैं कौन? मैं तो एक छोटा सा एक सांसद था. बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो थे वो भी अपना डिसीजन लिए, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम.
3: आपके पास कहीं से कॉल भी आया था?
2: कहाँ से
3: कॉल भी आया था आपके पास?
2: ना आज नहीं आया.
5: थैंक यू. अरे रुको यार, रुको, कर लो यार. एक एक करके
6: बंगला में दीदी
5: क्या बोला सर? क्या
6: दीदी बंगला में
7: बंगला मानुष के की बोल रहे
2: বাংলার মানুষ যেভাবে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে যে রায় দিয়েছে, এই রায়কে দেখে আমিও নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিলাম. আদারওয়াইজ অন্য কোন ইন্টেনশন না. সেকেন্ড হলো, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিবে আগামী দিন আমি ওই কাজ করবো.
7: শুভেন্দুদের সাথে কথা হয়েছে কালকে?
2: না না, পার্সোনাল কথা আমি এখানে বলবো না. আমি যে কথা বললাম, বাংলার মানুষ যেভাবে রায় দিয়েছে, রায়কে দেখে আমি নিজে ডিসিশন দিয়েছি. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাদের দাদা যেভাবে আগামী দিন রায় দেবেন ওইভাবে আমরা কাজ করবো, ডেভেলপমেন্ট কিনা কাজ করবো. হো গিয়া তো হো গিয়া. মেরা কোই ডিমান্ড? মেরা যো মেরা বঙ্গাল কে লোক, পশ্চিম বঙ্গাল মে যো ম্যান্ডেট বিজেপি কো মিলা, ভারতীয় জনতা পার্টি কো মিলা, অবভিয়াসলি इस राय को देखते हुए, क्योंकि गणतांत्रिक देश का गणदेवता पब्लिक है, पब्लिक अगर वोट दिया बीजेपी को, इस राय को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया.
8: राइट, दैट वाज द MP who has resigned from the TMC saying that he

0: meeting. He has been asked to appear with the resolution register where the MLAs had signed approving Shobhandeep Chattopadhyay as the leader of the opposition. Of course, this signature scandal broke earlier this month. Also directing this entire fiasco within the Vidhan Sabha, where a sizable chunk of MLAs have now extended support to the BJP indirectly because of the signature scam that they have reported to the speaker, which was then passed on to the Kolkata police.
1: Shrishi, I need you to stay on with me. I'm going to come back to you in a moment from now. But while there is this three-week reprieve for Abhishek Banerjee, the nephew of Mamata Banerjee, there's been yet another jolt for the Trinamool Congress leader, Mamata Banerjee. The TMC MP, Prakash Chigbarek, has also resigned from his post as well as from the party. He has resigned as a Rajya Sabha MP from the Trinamool Congress, reacting to the resignation. The former TMC MP has said, and I'm going to quote him here, "I was not happy with the TMC and followed the mandate of the people of Bengal." Now, this comes just days after Mamata's close aide, Sukhendu Ray, resigned from the Rajya Sabha and the party, followed by Rajya Sabha MP Susmita Dev as well. In the Lok Sabha, sources tell NDTV that the list of rebel MPs has now grown to 19, with names such as Shayani Ghosh, Yusuf Pathan, Shatrughan Sinha doing the rounds. Team Mamata, however, has strongly rejected these claims, describing these claims to be a BJP-driven narrative.
2: Rajya Sabha MP Prakash Chigbarek हमारे साथ हैं. Sir, Kunal Ghosh कह रहे हैं कि opportunist हैं ये लोग. D gang के members बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग resign करने करते जा रहे हैं.
3: क्या? मैं किसी के personal attack नहीं करना चाहता.
2: Opportunist remarks दे रहे हैं लगातार इन लोगों
3: की. दूसरा कोई topic में बात नहीं.
2: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
3: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
2: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शंस के बाद क्यों हुआ?
3: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलैबोरेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम.
2: बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं.
3: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं.
4: मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है. मैं तो राज्यसभा का सदस्य नहीं हूं और इनको मैं ठीक से जानता भी नहीं था. तो क्यों इस्तीफा दिया है पता नहीं. कोई नाराजगी था इसके बारे में हमारा जानकारी नहीं है.
5: लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा है, पार्टी को छोड़ रहा है? सर, आखिर
4: तो दिखाई जा रहा है इनको कोई नाराजगी था. पहले वो बोल नहीं पाते, अभी बोलते हैं, रिजाइन करते हैं, बीजेपी उसका देते हैं, ये सब मिलके ये होता.
6: ये कि उनको मालूम है कि राज्यसभा की सांसद नहीं बन पाएंगे. अच्छी लड़की है लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को सत्ता में रहने का शौक है तो वो इसी तरीके से प्रयास करते हैं. मेरे को उनके खिलाफ कुछ नहीं, वो एक अच्छी हैं. उनका परिवार, हमारा परिवार बड़ा पुराना जानता है. मेरा पिताजी 1952 से सांसद थे, उनके पिताजी भी बड़े सीनियर सांसद थे, दोनों कैबिनेट में थे, तो एक पारिवारिक रिश्ता तो है. लेकिन फिर क्या करें,
7: आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए. जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है. इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं. तो जब तक भाजपा रहेगी, देश के जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है, वो हल होने नहीं वाले.
8: इट इज वेरी क्लियर नाउ टीएमसी इज इन डीप क्राइसिस. हाउ लॉन्ग इट विल सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, it has to be explained by Mamata Banerjee. Because what are the ideological foundations of our party? What are the political positions of our party? If they have strong ideological political foundations, how come the MPs just like that they migrate?
9: Mol eta gang chilo jemon D company e serokomi chilo gang. ধান্দাবাই লোক এসেছিল যে হেরেছে, ধান্দা হবে না, চলে যাচ্ছে. এই পার্টির ভবিষ্যৎ নাই কি, আর বাংলার ভবিষ্যৎ শেষ করে দিচ্ছে.
10: Another day, another MP has left Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Nobody wants to stay with Mamata and Abhishek because first, Janta.

0: if anything new is to be introduced, then their opinion is not taken. It is only 2 to 3 people whose opinion matters to Mamata Banerjee. And in the past 2 to 3 years, Mamata Banerjee changed a lot. This is not just stated by 1 or 2 MPs. Multiple such MPs, in fact, who resigned, they have stated this. And in fact, Sukhendu Shekhar Roy, who is said to be one of the staunch leader, one of the oldest member, the founding member, also in fact stated that he was not heard. And in fact, not just that, but also there was a review meeting held as well after the elections. And in that review meeting as well, many MPs, the rebel MPs, in fact, stated that Mamata Banerjee and her team, in fact, did not accept the fact that they have lost the elections. They did not take actually any review from these MPs, and only like always, the 2 to 3 people close to her were actually only heard. Back to you.
1: All right. Thanks so much, Vasudha and Teshi, for joining us with that latest development, this big blow to Mamata with Kalyan Banerjee. They're hitting out. So let's take you through all the developments, and Mamata's troubles continue as the rebellion grows. Now Kalyan Banerjee saying that he is upset with the growing stature of Abhishek Banerjee in the party. Also amid this, Trinamool Congress MP Shatrughan Sinha praised Prime Minister Modi. This comes after TMC MP Prakash Chigbarek has also resigned from his post, as well as from the Rajya Sabha, as well as from the Trinamool Congress. Reacting to his resignation, former TMC MP said that he was not happy with TMC and followed a mandate of people of Bengal. This comes days after Mamata's close aide Sukhendu resigned from Rajya Sabha and the party, followed by Rajya Sabha MP Sushmita Dev. In the Lok Sabha, sources indicate that the list of rebel MPs has now grown to 19, with names such as Sayoni Ghosh, Yusuf Pathan and Shatrughan Sinha doing the rounds. But remember, there is still no clarity as to how many are a part of this rebel faction. Team Mamata has strongly rejected the claims, describing them as a BJP-driven narrative, claiming that they still don't have the numbers to break the party.
2: Rajya Sabha MP Prakash Chigbarek हमारे साथ हैं सर. कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करने करते जा रहे हैं.
3: क्या मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
2: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
3: की, आप कोई टॉपिक में बात नहीं.
2: अच्छा, आपकी क्या वजह रही.
3: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया हूँ.
2: सर ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्यों हुआ.
3: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ, एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कॉलिब्रेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम.
2: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं.
3: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं था.
4: देखिए, एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है. मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है, उसके मन में ये भी लग रहा है. मेरा हम प्रतिमा मंडल को घाशीरूपुर जोड़ा फूले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया है, वो क्यों जाएगा. तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ. 4 तारीख मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे. मैं 4:20 का फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ, और उसके उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं. तो मैंने कहीं गई नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ. और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से ये खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो.
5: मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है. मैं तो राज्यसभा का सदस्य नहीं हूँ, और इनको मैं ठीक से जानता भी नहीं था. तो क्यों वो इस्तीफा दिया है पता नहीं, कोई नाराजगी था इसके बारे में हमारा जानकारी नहीं है.
6: लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा है, पार्टी को छोड़ रहा है सर.
5: तो दिखाई जा रहा है इनको कोई नाराजगी था. पहले वो बोल नहीं पाते, अभी बोलते हैं, रिजाइन करते हैं, बीजेपी उसका देते हैं, ये सब मिलके ये होता.
7: ये कि उनको मालूम है कि राज्यसभा की सांसद नहीं बन पाएंगे, अच्छी लड़की हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को सत्ता में रहने का शौक है तो वो इसी तरीके से प्रयास करते हैं. मेरे को उनके खिलाफ कुछ नहीं, वो एक अच्छी हैं. उनका परिवार, हमारा परिवार बड़ा पुराना जानता है. मेरा पिताजी 1952 से सांसद थे, उनके पिताजी भी बड़े सीनियर सांसद थे, दोनों कैबिनेट में थे. तो एक पारिवारिक रिश्ता तो है, लेकिन फिर क्या करें,
8: একটা গ্যাং ছিল, যেমন ডি কোম্পানি এ সেরকমই ছিল গ্যাং। সেই ধান্দাবাজ লোক এসেছিল যে হেরেছে, ধান্দা হবে না, চলে যাচ্ছে। এই পার্টির ভবিষ্যৎ নাই কি, আর বাংলার ভবিষ্যৎ শেষ করে দিচ্ছে।
9: সি ইজ ইন কমপ্লিট টুকড়ে এন্ড ইমপ্লোশন মোড নাও আফটার আরএস এমপিস, রাজ্যসভা এমপিস হ্যাভ কুইট, লোকসভা এমপিস আর গোয়িং অ্যাওয়ে আফটার বিধানসভা এমএলএস হ্যাভ গন অ্যাওয়ে মেজরিটি অফ দেম। কল্যাণ ব্যানার্জি হ্যাজ অ্যাটাকড অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড সেড দ্যাট হিজ এসি রুম পলিটিক্স, হিজ অ্যারোগেন্স হ্যাজ কস্ট আস। ওয়াই ব্লেম আদার্স দেন when your own party is suffering a crisis due to Abhishek Banerjee? All the people who have defected from Mamta have said that Mamta ji, we are okay with you, but Abhishek is the cause that we cannot stay in the party, and we are the asli TMC. Now Mamta Banerjee has to choose, does she choose party or does she choose Abhishek Banerjee?
5: Sahi hai ki istifa unke yahan ho raha hai Raj Sabha mein, unke Raj Sabha ke sansad भी उनको छोड़कर जा रहे हैं, और उनको लगता है टीएमसी में रहना उनके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, तो वो जो समझदार हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं।
1: So three big jolts to Mamata Banerjee in a week's time as far as the Rajya Sabha goes. And after first Sukendu Sekhar Roy, who quit the party and the Rajya Sabha on the 8th of June. Remember, he is one of the oldest serving Rajya Sabha members of the Trinamool Congress. Then comes the resignation of Sushmita Dev, who also resigned. This was on the 10th of June. Remember, this has taken place within a week's time. In just a few days' time, you have Rajya Sabha MPs of the Trinamool Congress resigning, Sushmita Dev resigning from the Rajya Sabha and from the party membership yesterday. And then today morning, you again have another resignation of Prakash Chigbarayak, who sent in his resignation from the Rajya Sabha. He has also resigned from the party's membership as well. So a Shiv Sena and NCP-like split may take place in the Trinamool Congress as well. Sources have indicated that BJP strategists are exploring a real party formula to trigger a split within the Trinamool Congress. Remember, this has been done before, and it is the Maharashtra formula really that is being used over here as well. Under this strategy, a rebel faction within the Trinamool Congress could stake claim to being the real Trinamool Congress and seek recognition from the speakers of both the Legislative Assembly and Lok Sabha. Remember, there around 60 MLAs have also revolted and formed a separate faction in the Assembly. A parallel petition could also be moved before the Election Commission, claiming rights over the party's election symbols. Sources say the move would be based on legal argument that the Trinamool Congress was not functioning according to its own constitution, with allegations that key decisions were being taken arbitrarily by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. So let's take a look at this game plan, and this is being orchestrated by the BJP. Remember, the first inkling of the revolt among the parliamentarians came when they went to meet Bhupendra Yadav, who was the BJP in charge of West Bengal. So they are going to claim the real Trinamool Congress status, saying that we are the party. They will then seek the speaker's nod, and the speaker is a BJP leader. They move Election Commission then, and then claim the party symbol as well. We saw this happen with the Shiv Sena and with Sharad Pawar NCP. They will then gain official recognition and the battle for TMC control. So this is what is what we have learned from sources that BJP strategists are planning now for the Trinamool Congress. But does the Trinamool Congress rebel faction have those 19 MPs? We'll continue to track this story. For the moment, slipping into a short break. Stay with us.

0: हल्दर, दीपक अधिकारी, कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, असित कुमार माल एंड रचना बैनर्जी. दैट्स द लिस्ट दैट वी हैव विद अस मिस रॉय.
1: Yes, yes, yes, absolutely. Almost 20,
0: Yeah, this is a team of 19. See, you know, look, many 19. Things. Ma'am, you've been quoted as saying that, you know, Mamata Banerjee had changed. There was no access to her. There was corruption, etc. My simple question to you is to go a little deeper than that. All of these names that I've just read out are people, you know, who were praising Mamata Banerjee till before the election results. You're all in the Lok Sabha, not in the assembly. But I'm just saying that you were all leaders who were supportive of Mamata Banerjee before the election results. Something has changed after the election results. That is what I'm curious about. You have not spoken against Mamata Banerjee before the results.
1: If you are in the NDTV, you have to praise that your TV channel.
0: Mm.
1: You can't say anything if you are happy. If you are not happy in your with your colleagues or your owners, you can't say anything because it's a. I think ethically you can't.
0: But
1: say
0: madam,
1: that
0: I'm asking you why. But why would this not? Why would all of these people wait till after the results for to take such action?
1: No,
0: is my question.
1: If you ask me. It's a, for my decision was not a for defeated our party vote after vote. It's not that. That time it was after vote. Didi called us for 10 or after 20 to 12 days. That time I was expecting. She asked.
2: Welcome back to the Made in Place Summit. There's a really lovely energy out here in the exhibition space. People are taking a break, looking at old photographs, playing simple games, and honestly, just letting themselves be a little innocent again. And that brings us beautifully to our final segment of the day, because behind all the big policies and scientific studies, there are people who bring the magic to life every morning. And today they are telling us why they do the work that they do.
3: तबस्सुम जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा. आप प्ले यानी कि खेल में हर रोज काम करते हैं, बच्चे आपके साथ बहुत समय बिताते हैं, जब आप आंगनवाड़ी में होते हैं उनके साथ आप घंटे समय बिताते हैं, चाहे उनकी हंसी हो, उनका रोना हो, उनकी खेल, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है. अगर मैं आपसे पूछूँ आपके एक दिन के काम में आपके लिए एक सफल दिन क्या होगा?
4: मेरे पास हर तरीके का बच्चा आता है मेरी आंगनवाड़ियों में, मेरी साली जो साथ की हैं उनकी आंगनवाड़ियों में. तो मेरा यही उद्देश्य रहता है जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो हंसते हुए जाएं.
3: तबस्सुम, आज हम सब बच्चे बन सकते हैं.
4: हाँ जी, मैं यही कह रही थी, जैसा आपने अपना नाम रखा है बचपन मनाओ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत देर से सभी बहुत मुझसे तो सभी काबिल हैं और मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपके छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. तो सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्रिएटिविटी की बातें कर रहे थे, रचनात्मक की बातें करते, ग्रुपिंग की बातें कर रहे थे. ये सब चीज़ें जब मैं सुन रही थी तो मैं कह रही थी ये तो मैं अपनी कक्षा में कराती हूँ, ग्रुपिंग करती हूँ मैं ग्रुपिंग ऐसे करती हूँ जैसे मेरी क्लास में जो पुराने बच्चे हैं वो सीख चुके हैं, अब नए बच्चे आ रहे हैं वो उनका कंटेंट बीच में चल रहा है. मैं क्या करती हूँ, एक होशियार बच्चा, एक थोड़ा सा नया बच्चा, एक मिडिल बच्चा, तीन बच्चों का ग्रुप इधर बना दिया, तीन का इधर बना दिया, तीन का. मैं उद्देश्य अपना माइंड में रखती हूँ कि ये एक्टिविटी कराने से मेरा ये विकास होगा. जो हम स्टोरी कराते हैं या कोई भी चीज कराते हैं,
3: मैं आपके पास दोबारा आऊंगी. इसके पहले मैं एक्चुअली सुनीता जी से पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहे, किसी बच्चे की हो, किसी परिवार की हो, जिससे आपको लगा कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो वाकई में बहुत जरूरी काम है. जैसे अभी शेयर किया तबस्सुम ने हमारे साथ, आपको लगे हाँ जो मैं इन बच्चों के फेस पर खुशी ला रही हूँ, एक मुस्कान ला रही हूँ, ऐसी कुछ कहानी आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे?
5: मेरे यहाँ बच्चे छोटे छोटे आते हैं, 3 साल से ऊपर के, रोते हुए आते हैं. बच्चे अंदर भी नहीं घुसता है क्लास में, रोता है, घर जाना है, घर जाना है. हम उसे प्यार से बोलते हैं, गोदी में बिठाते हैं, खिलौना दिखाते हैं. बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आपको पता है, और हम भी करते हैं, लेकिन हम उनको प्रेशर नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, मार नहीं सकते, बच्चा अपने मन

0: that he will not be deserting Aditi. He's saying, I'm neither joining any other faction nor any other party. I'm doing what I think is right and I won't abandon the sinking ship. Let's listen into what Babul Supriyo said.
1: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
0: All right, so Babul Supriyo there saying that he is not abandoning the sinking ship. And so good news from Mamata Banerjee after first Shatrughan Sinha also came on record and said he will be staying with Didi. Let's go across to Shreshi for more on this. So Shreshi, now some more good news from Mamata Banerjee in the midst of a barrage of bad news.
2: Yes, certainly reprieve for the Trinamool Congress as well as Supremo Mamata Banerjee, especially at a time when we've been seeing exodus within the party and the rebellion just growing from the Vidhan Sabha to the parliament. And at a time like that, today at least three of the parliamentarians have stood their ground and said that they are going to be backing Mamata Banerjee and not leave her side. That included Babul Supriyo, as we just heard, also Pratima Mandal of the Lok Sabha, and Shatrughan Sinha earlier saying that Didi has stood by him during rough times, and he also will return that to Didi and support her till the end, and he's not going anywhere. This comes from a place because we have been reporting that 20 MPs have decided to form a separate bloc and extend support to the NDA that happened on Monday under Kakoli Ghosh Doshtida's leadership. However, they have not revealed those 20 names. Who are these leaders? We did get a picture from inside Bhupendra Yadav's residence where they did hold a meeting, but only about 7 or 8 of them were seen. The Trinamool Congress officially has rebutted, saying that they have just about 13 MPs in their kitty, but not as being claimed as 20. So the number games are changing rapidly. Every day we're seeing MPs stepping down from their primary membership or, resigning from their Rajya Sabha seats. But at a time like this, at least three MPs have shown support. And also we earlier heard today Kalyan Banerjee giving an ultimatum to the party supremo that either it's Abhishek Banerjee in the party or he. And this kind
0: right.
2: of fury within the Trinamool Congress is becoming very difficult for the party to handle. But of course, this Babul Supriyo extending support comes as a relief for Mamata Banerjee.
0: All right. Thanks so much, Shreshi, for taking us through all those developments. In fact, let's take you through what has happened so far with the Trinamool Congress today and mounting bad news from Mamata Banerjee, including from her close aide, Kalyan Banerjee, who's also now hit out. And he hit out at Abhishek Banerjee. He said that he's upset with Abhishek Banerjee in the party and Mamata Banerjee would have to choose. Also earlier, you had Trinamool Congress MP Shatrughan Sinha praising Prime Minister Modi, but he has since made it clear that he's staying with Didi. And this comes after Trinamool Congress MP Prakash Chigbarek resigned from his post as well as from the party. And on his resignation, the former MP said that he was not happy with the Trinamool Congress and was following the mandate of the people of Bengal. This comes days after Mamata's close aide, Sukendu Ray, resigned from Rajya Sabha and the party, followed then by Rajya Sabha MP Sushmita Dev. And the Lok Sabha sources indicate that the list of rebel MPs is 19. However, we've already seen some of those MPs claiming that they are not in the rebel faction, but they remain with Mamata Banerjee. But there are names such as Sayoni Ghosh and Yusuf Pathan in that rebel list. Team Mamata, however, has strongly rejected these claims, describing them as a BJP-driven narrative.
3: It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
4: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं। सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करने करते जा रहे हैं। क्या
5: मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता,
4: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
5: की, कोई टॉपिक में बात नहीं।
4: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
5: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया हूँ।
4: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
5: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है। 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलैबोरेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला। ये 50 साल का जो सफ़र है इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था। अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम।
4: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं,
5: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं।
6: देखिए, एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है उसके मन में ये भी लग रहा है मेरा, हम प्रतिमा मंडल को घासीडूपुरे जोड़ा फूले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया है, वो क्यों जाएगा? तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ। 4 तारीख मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे, मैं 4:20 का फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ और उसके उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। तो मैंने कहीं गई नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं मैं उसको बोल रही हूँ, आप आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से ये खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो?
7: मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं तो राज्यसभा का सदस्य नहीं हूँ और इनको मैं ठीक से जानता भी नहीं था, तो क्यों वो इस्तीफा दिया है पता नहीं, कोई नाराजगी था इसके बारे में हमारा जानकारी नहीं है।
8: लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा है, पार्टी को छोड़ रहा है? सर,
7: तो दिखाई जा रहा है इनको कोई नाराजगी था, पहले वो बोल नहीं पाते, अभी बोलते हैं, रिजाइन करते हैं, बीजेपी उसका देते हैं, ये सब मिलके ये होता।
9: ये कि उनको मालूम है कि राज्यसभा की सांसद नहीं बन पाएंगे, अच्छी लड़की हैं लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को सत्ता में रहने का शौक है तो वो इसी तरीके से प्रयास करते हैं। मेरे को उनके खिलाफ कुछ नहीं, वो एक अच्छी हैं, उनका परिवार हमारा परिवार बड़ा पुराना जानता है। मेरा पिताजी 1952 से सांसद थे, उनके पिताजी भी बड़े सीनियर सांसद थे, दोनों कैबिनेट में थे, तो एक पारिवारिक रिश्ता तो है, लेकिन फिर क्या करें।
10: ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं दो बार, प्रभु के सीमन अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं।
11: आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो जब तक भाजपा रहेगी देश के जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है, वो हल होने नहीं वाले।
12: इट इज वेरी क्लियर नाउ टीएमसी इज इन डीप क्राइसिस, हाउ लॉन्ग इट विल सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाई ममता बनर्जी, बिकॉज वॉट आर दी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ आर पार्टी, वॉट आर दी पोलिटिकल पोजिशंस ऑफ आर पार्टी, इफ दे हैव स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल पोलिटिकल फाउंडेशंस, हाउ कम दी एमपीज जस्ट लाइक दैट दे माइग्रेट?
13: TMC इज इन कम्प्लीट टुकड़े एंड इम्प्लोजन मोड नाउ आफ्टर RS MPs, राज्यसभा MPs हैव क्विट, लोकसभा MPs आर गोइंग अवे, after Vidhansabha MLAs have gone away, majority of them, Kalyan Banerjee has attacked Abhishek Banerjee and said that his AC room politics, his arrogance has cost us. Why blame others then when your own party is suffering a crisis due to Abhishek Banerjee? All the people who have defected from Mamta have said that Mamta ji, we are okay with you, but Abhishek is the cause that we cannot stay in the party and we are the asli TMC. Now Mamta Banerjee has to choose. Does she choose party or does she choose Abhishek Banerjee?
0: Now, while there's still no clarity as to how many Trinamool Congress Lok Sabha MPs are on that list of rebel MPs, however, one thing is clear that a possible formula like was used in Maharashtra with the Shiv Sena and the NCP could be put in place for the Trinamool Congress as well. Sources indicate that BJP strategists are exploring a real party formula. What is the real party as different from the original party? A formula to trigger a split within the Trinamool Congress under the strategy. The rebel faction within the Trinamool Congress could stake claim and say that they are the real Trinamool Congress and then seek recognition from the speakers of both the Legislative Assembly and the Lok Sabha. A parallel petition could also be moved before the Election Commission claiming rights over the party's election symbol. Sources say the move would be based on legal arguments that the Trinamool Congress was not functioning according to its own constitution, with allegations that key decisions were being taken arbitrarily by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. And remember, we have seen this picture before in Maharashtra when it took place with the Shiv Sena and with the NCP, and the parties were then snatched from Uddhav Thackeray and Sharad Pawar. All right, some breaking news now coming in, and Rahul has held a meeting with the Congress and said Modi ne marwa diya. According to reports, Rahul Gandhi stated that various sections of society, be it farmers, the poor or students, are all saying that Modi has ruined them. So this is the information coming from a meeting that took place where Rahul Gandhi is said to have attacked Prime Minister Modi during this huddle and claimed that various sections of society who are currently in distress, whether be it farmers, the poor or students, they're saying Modi ne marwa diya. Let's listen into what Ajay Kumar Lalu said.
14: आप गांव के आदमी हैं और बेसिक रूप से आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ों से परेशानी होती है तो लोग यह बात जरूर कहते हैं कि इनका कारण हम मर गए हैं। आप बताइए, नौजवानों के भविष्य के ऊपर डांका डाला गया है, लाखों परीक्षार्थी नीट के पेपर, सीबीएसई के पेपर से हताशा और निराशा में जी रहे हैं। 10 साल में 89 पेपर लीक होना, क्या ये नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं है? नौजवान और छात्रों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? उनके भविष्य को मारा है कि नहीं मारा है? सरकार किसकी है? किसान आज घंटों लाइन में लग रहा है डीएपी और यूरिया के लिए। किसानों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? तो सिंपल सा लॉजिक है, मोदी ने किसान, नौजवान और गरीबों को मरवा दिया।
0: All right, so this is what apparently took place during a Congress meeting where Rahul Gandhi claimed that various sections of society are in distress and they're all blaming Prime Minister Modi. Let's go across to Janendra for more on this. And Janendra, so give us more details as to what was said during this meeting and a big attack by Rahul Gandhi against the Prime Minister.
15: So Rahul Gandhi have time and again said this, that whenever he meets people from every section of society, they are complaining about price rise or the divisive politics of BJP, and the students are facing the issue of paper leak. So every group is complaining that the situation is created by Prime Minister, and that Rahul Gandhi phrased it as PM ne Modi ne marwa diya. And Congress has planned a nationwide agitation in coming days against price rise, paper leak. So the Congress had called a very important meeting. All state presidents and in charges, general secretaries were called for a meeting. Attended by Mr. Kharge and Rahul Gandhi. We have Nasir Hussain with us, General Secretary of Congress. ये जो राहुल गांधी ने कहा मोदी ने मरवा दिया, क्या वो कहना चाहते हैं?
16: अरे भाई, पेपर लीक जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? 79 बार पेपर लीक हुआ है, 48 बार पेपर कैंसिल हुआ है, तो किसके वजह से हुआ है? कौन एजेंसीज हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? ये कुरियर एजेंसीज किसके हैं? ये सब इन्हीं के लोग से जुड़े हुए हैं। तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी है ना, तो मोदी जी ने मरवा दिए पूरे सबको।
15: देखिए बीजेपी कह रही है कि ये डर फैला रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और ये क्या भाषा है? ये गाली
16: सरकार थोड़ी, किसकी सरकार है? कौन प्रधानमंत्री है? कांग्रेस की तो सरकार है नहीं।
15: बीजेपी लैंग्वेज पे आपत्ति जता रही है सर, भाषा।
16: अरे अभी जो बच्चों को आपने जो है, जो बच्चे

0: गरीब लोगों के बच्चे जाके होटलों में रह के तीन तीन दिन चार चार दिन रह के पैसा खर्च करके रहते, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उनका नहीं होता है, उनके भविष्य से ये खेल रहे हैं, उनकी तैयारी जो करते हैं उस पर पानी फेर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, तो कौन दोषी है इसके लिए? कांग्रेस दोषी है? अपोजिशन दोषी है? कौन दोषी है? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? कौन वोन करते हैं? वो सभी वो सेंटर्स के मालिक कौन है? ये एजेंसीज जो कंडक्ट करते हैं ये कौन है? ये जो कोरियर जो लेके जाता है क्वेश्चन पेपर ये कौन है?
1: हाउ कांग्रेस इज प्लानिंग टू कॉर्नर गवर्नमेंट ऑन दिस इशू सर?
0: सी, इट इज वेरी क्लियर दैट नरेंद्र मोदी जी एंड धर्मेंद्र प्रधान आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वी हैव आस्क्ड फॉर द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान. The students of this country, not just Congress party or any opposition party, the students of this country have asked for the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. Modi should take his resignation and free him from this
1: responsibility. How Congress will is planning to...
0: We'll take this to the people of the country. We'll have agitations. We'll have a movement. We'll take this to the people of the country. We'll tell the people of the country that it is Modi who is responsible for all the paper leaks in this country. It is BJP government that is responsible for all the paper leaks in this country. Unhone marwa diya hai.
1: So you can hear clearly Congress leader Nasir Hussain saying that Modi Prime Minister is responsible for every problem that the country is facing, be it price rise or paper leak or unemployment. And the same thing was raised by Rahul Gandhi, and Congress in coming days will agitate on ground to corner this the government, and Congress is has again demanded resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan.
2: All right, thanks so much, Janinder, for joining us with that latest news. Rahul Gandhi hitting out at the Prime Minister, claiming public discontent and saying that several sections of society are claiming that Modi ne marwa diya. But let's take a look at what the BJP had to say in reaction to this.
3: जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कहा है मोदी ने मरवा दिया. ये वही लोग हैं जो मोदी जी को गालियां देते हैं, 150 से ज्यादा गालियां दी है. मोदी की मौत होगी, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर की मौत मरेगा, लाठी डंडे से मारो मोदी को, ये कहने के बाद, जहरीला सांप है मोदी ये कहने के बाद अब एक और ऐसा बयान. राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और पैनिक क्रिएट करना, फियर मॉन्गरिंग करना, यही इनका काम है. तो ये कोविड वैक्सीन पर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये इकॉनमी को डेड बोलकर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे पैनिक क्रिएट करते, कहते डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इंटरवीन होना चाहिए यूएस यूके के द्वारा, और अब किस प्रकार से आग लगा देंगे, केरोसिन छिड़क दिया है, ये बयान देने के बाद सिख जो है टर्बन नहीं पहन सकते, इस प्रकार का बयान देने के बाद अब राहुल गांधी फिर से फियर मॉन्गर कर रहे हैं.
2: All right, so the BJP, they're hitting out at Rahul Gandhi's latest criticism of Prime Minister Modi. With that, we'll slip into a short break. More coming up on the other side. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
6: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
5: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
7: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: इंडिया इज रीवायरिंग The way it builds, the way it connects.
6: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
5: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
7: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
9: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
0: एंड इन द मिडल ऑफ दिस एस्केलेटिंग क्राइसिस इन द तृणमूल कांग्रेस, जॉइनिंग मी लाइव इज तृणमूल बीरभूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा शताब्दी रॉय। मिस रॉय वेलकम। यू नो सो मच हैज बीन सेड ओवर द लास्ट फ्यू डेज, यू नो, बट देयर सीम्स टू बी नो एंड टू दिस क्राइसिस। यू हैव सीन टू बिग नेम्स टुडे, you know, quitting, one quitting, which was Sushmita Dev. The other is Shayoni Ghosh, whose name has now figured in the list of, you know, quote unquote rebels that are part of the faction that you belong to as well. The crisis doesn't seem to be ending, Ms. Roy. Welcome.
10: It's happened because of, I think, everyone has same problem. Everyone has same complaint. Everyone has same feeling insult of the, from the parties. I think that's why all are together. And it's a 20,

0: all of them together. Was that the actual problem? Was there no glue that held all the cadres, the workers, and specifically the leaders together, that they felt reassured to be in a party that had lost elections?
1: Basudha, I have a personal take on this issue. I think that there is a difference between pan-Indian party and the regional party also. There is a inner party democracy. It is less usually in the regional autocracy, in the regional parties. Even in Mayawati's party, I have seen several issues in TMC. We have to accept this fact, and if TMC leaders, second rank, third rank leaders, if they discuss, then it is better that there is no inner party democracy in that way. Whatever Supremo will say, we have to accept it. That was the political culture. And after this result, now this catharsis, discontent. Hmm. Now I am observing that it's like a Vesuvius.
0: Okay.
1: So, but if you give the space, even I have seen Kalyan Singh Baghela in BJP party. Hmm. So it is not true that there will be no dissident, there will be no
0: The point of contention here is internal democracy and the scale of it. Dr. Sen, you have been with the TMC since its formative years. Did the party's approach or the leadership's approach towards handling matters related to the party, did it change over the years? Was there a problem that set in after Mamata Banerjee's second term? Was that a problem here? Do you feel that there was something that went missing after the few years?
2: Yeah, I told you earlier also that there was a huge transformation in the party. Recent Trinamool Congress was not that which was formed in 1998. There was no proper place to address the grievances, to address our own school of thinking. You take it from me. You ask any TMC cadre or any TMC leader. In last few years, TMC leaders across the state, they are literally looking for someone whom they can address their issues from several panchayats, from several blocks, from several jela parishad, from several assemblies and Parliament. Our party president, former party president, Mr. Subhuto Bokshi, used to sit in party office. Mm. But he was not at all interested to address all the issues all the time. And apart from him, there was no one else in the party.
0: Mitra, is that true? As a young worker in the party, you feel all your leaders are sort of completely inaccessible. Is there a channel of communication open for people like you?
3: You see, what Jayantoda had said is partially true, because personality-based party, they tend to follow the person who has created a party, who is the main mobilizer, who is the main magnetic force for the entire party ecosystem. So there is no wrong. Nothing wrong that whatever the party decided, it is ultimately the ultimate decision of the party supremo. And everybody towed the line. Like in Bengali, what everybody used to mock us, like there is one post and the rest of them are lamppost. So in a party which everybody acknowledged that there is one post, that is the post of the party supremo, and everybody else doesn't matter. So even if whatever you are discussing is relevant partially, ultimately what matters is my leadership and our 41% plus vote. Yeah, that is intact. Leaders might come, leaders might go, and leaders when they...
0: Nuhin Sinha, your response to that, the vote share argument that's often made by the party that loses. Nuhin Sinha.
3: There is the lack of those attractions.
0: Nuhin Sinha, your response.
4: What argument?
0: Nuhin Sinha, the response that, you know, it's a vote share that matters and TMC still has some vote share, you know, a respectable vote share, and leaders will come. I mean, workers and MPs and MLAs will come and go. It's a party.
3: Nothing else.
0: It's a party that matters.
4: We have, you know, point is anybody who has followed West Bengal's politics closely knew on 4th of May that TMC does not have a future. TMC is not an original party. It was formed by hastily, you know, embezzling members out of the Congress party, out of the CPIM. Many of them would go back to the Congress party and the CPIM. Some might form a separate entity. Some might want to, you know, have themselves seen as the original TMC. But the TMC of Mamata Banerjee per se, given the anger which still persists 35 days after the election results, does not have any future. So, you know, and that is why the reason, that is why perhaps the speculations are, you know, floating around on what, whether Mamata Banerjee herself might join another party. But, you know, I have in the last three decades never seen this kind of hatred, this kind of, anger against any political individual or political party.
0: The disintegration that we have seen of the TMC is not something we have witnessed in a long time. Thank you all of you for joining me on this broadcast. We have an interesting interview coming up. My colleague, Manogya Loiwal, spoke exclusively to TMC MP Shatrughan Sinha. Let's listen in to what he said.
5: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी. आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ. सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
6: मेरा ख्याल है सब ठीक है और आपको ज्यादा पता होगा. आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है. मुझे लगता है आपको पता होगा. जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है.
5: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
6: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ. जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था. सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भेजा के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था. और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मत से जीता था, आप सबों को पता है. तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी. तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं. इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं.
5: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी. कोई कारण है, कोई मंशा? हा, हा,
6: हा। आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं. मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं. और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है. मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया. मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया.
5: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
6: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है. क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going. मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया, और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूँ, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।

0: ट्रेन चलने का प्रपोजल आ रहा है, तो ये साधारणतः किसके लिए है? वहाँ के नागरिक के लिए है, पर इस वक्त कौन पाएंगे? वहाँ के साधारण पब्लिक पाएंगे? ऑब्वियसली ये सब बहुत सारा योजनाएं हैं जिसको सपोर्ट भी करना चाहिए हम लोगों को।
1: 13 से घटके 10 अब संख्या रह गई है तृणमूल की राज्यसभा में सांसदों की। क्या वो लोग आपस में बात कर रहे हैं? क्या आपकी उन लोगों में से किसी से बात हो रही है, या सुष्मिता देव या शुभेंदु शेखर रे से आपकी बात हुई है?
0: सुष्मिता जी से कल बात हुआ था कुछ, लेकिन दूसरा उस तरह किसी से उस तरह आज बात नहीं हुआ है।
1: आपने बोला है कि आप चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के इंस्ट्रक्शंस पे आगे बंगाल के लिए काम करेंगे, भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं आप?
0: समय का इंतजार कीजिए, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समय का इंतजार कीजिए।
1: इसका मतलब आप लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को?
0: मैं बोला ना, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा आप लोगों को प्रेस करके हम बोल देंगे, जो भी डिसीजन होगा।
1: आपका रेजिग्नेशन लेटर मैंने देखा, आपके रेजिग्नेशन लेटर में आपने बहुत संक्षिप्त में लिखा, पर उसमें एक चीज़ आपने लिखी जिसमें आपने धन्यवाद दिया राज्यसभा के वाइस चेयर को, बट लेकिन उसमें मुँह के बारे में नहीं थी, ऐसा क्यों?
0: मैं तो लेटर एड्रेस किया किसको? माननीय चेयरमैन को, जो हाउस के चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं एवं उन्हें, तो ऑब्वियसली तो ऑफिशियल लेटर है, तो ऑफिशियल लेटर में जो डिपार्टमेंटली वाइज लिखना चाहिए वही लिखा हूँ मैं।
1: ये बताइए कि आज कल्याण बनर्जी ने कहा है कि या तो वो या अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्या ये अब
0: टिप्पणी में कभी भी नहीं जाऊँगा? मैं पहले भी बोला था, मैं किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी पर कभी नहीं जाऊँगा।
1: एक मैसेज आप अगर ममता बनर्जी को इस चैनल इस शो के माध्यम से देना चाहेंगे तो वो क्या होगा?
0: नहीं दीदी, ऑनरेबल लीडर है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं अपना व्यक्तिगत राय रखा।
1: ठीक है प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन NDTV। दैट ऑफ कोर्स वाज द थर्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम द राज्यसभा फ्रॉम तृणमूल। दैट स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी इन राज्यसभा हैज नाउ श्रंक फ्रॉम 13 to 10, इवन एज देयर आर रिपोर्ट्स अबाउट remains to be seen whether that figure changes or not going forward.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज़ आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।
9: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
10: NDTV stand.

0: Starting off, it has been 5 hours since Abhishek Banerjee's date with the CID began, and now the hours are increasing, but no sign of Abhishek Banerjee coming out of the CID office in Kolkata, where he has been grilled into the forged signature case. The controversy, remember, erupted after a proposal seeking recognition of the Trinamool's Sovandeep Chattopadhyay as leader of opposition allegedly contained forged signatures of other MLAs. The proposal was allegedly drafted at a meeting at Mamata Banerjee's home. Two Trinamool MLAs, Ritabrata Banerjee and Sandeepan Saha, complained, calling the resolution manufactured and fabricated. They red flagged 14 of the 70 signatures. After this, Abhishek Banerjee is now being grilled by the CID. My colleague Shreyashi, who has been tracking this story from the very beginning, is joining me. Shreyashi, what line of questioning must be, you know, right now he must be facing inside the CID office?
1: Well, when the CID served him a notice, they requested him to bring in the resolution book in which the signatures were made, because this entire incident unfolded at the party's central office in Kolkata, which is also Mamata Banerjee's residence. And the letter that was sent to the speaker was in Abhishek Banerjee's letterhead, who is the Trinamool Congress National General Secretary. And those signatures that were sent from there had been given by Abhishek Banerjee. So the CID essentially wants to understand how many MLAs were present, because they've already carried out videography as well as signature experts at these MLAs who had signed that resolution book. And the CID is, of course, cross-questioning Abhishek Banerjee as to which were the MLAs who were present and how many of them had signed, to ensure that they get the correct information and then they can continue with the investigation. This is the first time he has appeared. He reached the CID headquarters in Kolkata at around 5:50, and the questioning still continues.
0: Absolutely. Thank you so much, Shreyashi, for those details. Keep tracking the story, as we will be keeping the big focus on it. For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamata's staunch loyalists. Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee. Calling him arrogant, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamata Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamata Banerjee do, and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamata Banerjee? Sample the reactions.
2: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करते जा रहे हैं.
3: क्या मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
2: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
3: की, कोई टॉपिक में बात नहीं.
2: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
3: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
2: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
3: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ, एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलैबोरेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम.
2: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं?
3: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं.
4: ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी. हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now did he decides what should be done?
5: Kalyan, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बैनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए, और सही माने में ममता बैनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी।
6: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
0: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Galoiwal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
7: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
8: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
7: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
8: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ

0: हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
1: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। कोई कारण है, कोई मंशा?
0: आप जानते हैं मैं अपनी अस्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता था, मेरा मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
1: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
0: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि When going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस कार्डर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के
1: जी
0: उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
2: Breaking news is coming in at this hour. This is regards to the Middle East tensions, where Donald Trump, the US president, has once again said that he is cancelling any attack on Iran. Remember, he had just few hours before that said that he will be carrying out strikes on Iran after there was fresh tension between the two nations. Now, Trump has come out to say that talks were held with the top Iranian leadership and then he has decided to postpone any attack and in fact cancelling them tonight. No plan of any attack on Iran and Iranian posts. So my colleague Vishal Vivek is joining me with more details. Vishal, many surprises come with Donald Trump as US president. This is one among them.
3: Exactly, and this is a stunning U-turn. Like you rightly said, just a few hours ago he had said that he will bomb almost all the places in Iran. He had made some big claims that US will be taking over Kharg Island. Kharg Island is one of the most crucial areas that Iran has. 90% of Iran's oil passes through that tiny island. So that was a huge claim. People were wondering what kind of operation will he order? Will there be a ground operation? So now this sudden U-turn means there will be no action as far as Kharg Island is concerned, or any strikes will not be carried through. And this is one of the most stunning U-turns in the 3 months of the duration of the war so far. So we'll have to see how far this lull in fighting will be there, because negotiations have been going on as far as this whole scenario is concerned. At the same time, the attacks have been going on. So it's all been helter-skelter. We don't know how far this will go on. So we'll have to see what kind of negotiations are happening while this war theater is active.
2: Absolutely. Thank you so much, Vishal, for those details. We will be tracking it as West Asia tensions are not only are harmful for these two countries, but the world is paying a price for it. And among that, and among those countries, one country is India, where the tragic incident has been reported from the Strait of Hormuz involving Palau-flagged vessels, MT Setabello, where three Indian seafarers initially reported missing have now been confirmed dead after their bodies were recovered and identified. The deceased have been identified as Aditya Sharma, a deck cadet, Shivanand Chaurasia, an engine fitter, and chief engineer Patnala Suresh. A video also surfaced showing the Indian crew issuing a distress call after it was hit by a US missile off Oman, saying the ship was on fire and it is sinking. The MEA has once again condemned the attack while informing that a strong protest is being lodged through diplomatic channels. But the families remain inconsolable. Take a look.
4: प्रियानंद हमारे बहनों ही हैं, शिप पे गए थे और वहीं पे जो तिरकोली युद्ध चल रहा है उसी में मिसाइल गिरा है और तीन लोग लापता हैं, जिसमें हमारे बहनों ही भी हैं, शिवानंद चौरसिया जो सुरौली के रहने वाले हैं, दो बच्चे हैं। तो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, शिप पे हैं।
5: पहले काम करते थे दुबई, दुबई से बम्बई गई ना, अब बम्बई से जहाज पे गई बाना।
6: अच्छा, कहाँ पे कहाँ गए थे?
5: अब पता नहीं, उमाम गए ना कि कहाँ गए ना, ये हम के याद नहीं कि कहाँ कहाँ। वो गाड़ी 6 महीना से चलती है।
6: अच्छा, जहाज पानी वाली।
5: हाँ,
6: क्या जानकारी मिला है आपको?
5: लड़का फोन करना कि भैया का जहाज के ऊपर बम गिर रहा, भैया का पता नहीं बा।
6: अच्छा,
7: तो
5: अरे वो आयल हम जानते हैं 8-9 बजे को। हाँ, इतने पर दिन में।
6: अच्छा, कहाँ है वो भैया, कहाँ रहते हैं? मतलब छोटे
5: छोटे लड़का का काला दुबई रहते हैं।
6: अच्छा, वो दुबई काम करते हैं।
5: हाँ,
6: और बड़े लड़के आप तो वहाँ।
7: नाम क्या उनका?
5: नाम शिवानंद।
8: मंगलवार को शाम को फोन आया तो सब कुछ अच्छा था, और बुधवार सुबह 7 बजे आता था फोन, शाम दोपहर 1 बजे फोन आता था, शाम को 9 बजे आता था। सिंगापुर पहले गए थे, बिल्डर कंपनी से गए थे, दिसंबर में 5 दिसंबर को गए।
6: क्या जानकारी वहां से मिली है?
8: वो नहीं फोन किया, हमारे देवर फोन के जे भाभी भैया बम
9: CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region.
10: The intensification of the conflict and its spread to other nations have evoked great anxiety. The mounting destruction and deaths and cessation of normal life and economic activities have deeply impacted India, a proximate neighbor with critical stakes in the security and stability of the region. There are almost 10 million Indian citizens who live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are of utmost priority to us. Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. In this background, India strongly reiterated its call for dialogue and diplomacy, avoiding impeding freedom of navigation and commerce, avoiding military targeting of commercial shipping, avoiding targeting of civilian population and infrastructure, and seeking an early end to the conflict. India expressed its support to all efforts aimed at peaceful resolution of issues.
2: News is just coming in. The 370 biryani remark row is getting bigger by the hour. Now Maharashtra police is swinging into action after a complaint was filed. The Maharashtra cops have registered a case against Praneet More and others. A case has been registered by the Maharashtra police. Remember, this remark was made at a Gurugram comedy club, where it sparked a bigger debate about consent and freedom and what exactly is comedy about. This Remark was made during a comedy show by a contestant where Praneeth More did not condemn it, but

0: Starting off, it has been 5 hours since Abhishek Banerjee's date with the CID began, and now the hours are increasing, but no sign of Abhishek Banerjee coming out of the CID office in Kolkata, where he has been grilled into the forged signature case. The controversy, remember, erupted after a proposal seeking recognition of the Trinamool's Sovandeep Chattopadhyay as leader of opposition allegedly contained forged signatures of other MLAs. The proposal was allegedly drafted at a meeting at Mamata Banerjee's home. Two Trinamool MLAs, Ritabrata Banerjee and Sandeepan Saha, complained, calling the resolution manufactured and fabricated. They red-flagged 14 of the 70 signatures. After this, Abhishek Banerjee is now being grilled by the CID. My colleague Shreyoshi, who has been tracking this story from the very beginning, is joining me. Shreyoshi, what line of questioning must be, you know, right now he must be facing inside the CID office?
1: Well, when the CID served him a notice, they requested him to bring in the resolution book in which the signatures were made, because this entire incident unfolded at the party's central office in Kolkata, which is also Mamata Banerjee's residence. And the letter that was sent to the speaker was in Abhishek Banerjee's letterhead, who is the Trinamool Congress National General Secretary. And those signatures that were sent from there had been given by Abhishek Banerjee. So the CID essentially wants to understand how many MLAs were present, because they've already carried out videography as well as signature experts at these MLAs who had signed that resolution book. And the CID is, of course, cross-questioning Abhishek Banerjee as to which were the MLAs who were present and how many of them had signed, to ensure that they get the correct information and then they can continue with the investigation. This is the first time he has appeared. He reached the CID headquarters in Kolkata at around 5:50, and the questioning still continues.
0: Absolutely. Thank you so much, Shreyoshi, for those details. Keep tracking the story, as we will be keeping the big focus on it. For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamata's staunch loyalists. Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee. Calling him arrogant, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamata Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamata Banerjee do, and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamata Banerjee? Sample the reactions.
2: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करते जा रहे हैं.
3: क्या मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
2: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
3: की, कोई टॉपिक में बात नहीं.
2: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
3: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
2: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
3: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ, एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कॉलिब्रेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा, ये सबको
2: मालूम. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी है कहीं ना कहीं?
3: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं
4: था. इट्स अ ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी. हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
5: Kalya, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बैनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात को लोगों तक रख पाए, और सही माने में ममता बैनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी।
6: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
0: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Galoiwal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
7: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
8: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
7: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
8: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश के सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
7: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा?
8: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
7: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
8: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
0: Breaking news is coming in at this hour. This is regards to the Middle East tensions, where Donald Trump, the US president, has once again said that he is cancelling any attack on Iran. Remember, he had just few hours before that said that he will be carrying out strikes on Iran after there was fresh tension between the two nations. Now, Trump has come out to say that talks were held with the top Iranian leadership and then he has decided to postpone any attack and in fact cancelling them tonight. No plan of any attack on Iran and Iranian posts. So my colleague Vishal Vivek is joining me with more details. Vishal, many surprises come with Donald Trump as US president. This is one among them.
9: Exactly, and this is a stunning U-turn. Like you rightly said, just a few hours ago he had said that he will bomb almost all the places in Iran. He had made some big claims that US will be taking over Kharg Island. Kharg Island is one of the most crucial areas that Iran has. 90% of Iran's oil passes through

0: across the country.
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
2: All set to visit.
1: Aditya Raj Kumar.
3: For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamta's staunch loyalists. Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee. Calling him arrogant, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamta Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamta Banerjee do and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamta Banerjee? Sample the reactions.
4: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करने करते जा रहे हैं. क्या
5: भाई, किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
4: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
5: की, कोई टॉपिक में बात नहीं.
4: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
5: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
4: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
5: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कॉलिब्रेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको
4: मालूम. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं?
5: मैं दूसरा कोई टॉपिक में
6: नहीं था. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work.

0: because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
1: कल्याण जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी।
2: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
3: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Yalowal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
4: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
5: मेरा ख्याल है सब ठीक है और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
4: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
5: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भेजा के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
4: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा?
5: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के हैं और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता था, मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
4: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
5: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं, उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, on Saturday.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: We've landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars. And that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pavan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
9: I think somehow they're scared. Otherwise, there is no need for them to deny permission.
8: Is the India bloc, you know, up on its last legs?
9: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long as Indira Gandhiji was, even to an extent Rajiv Gandhiji was there, they could slowly, but the disconnect started because of their policies. I really expected some kind of a greater understanding when this man, Mr. Rahul Gandhi, if I go and meet people, that gives me a very entire greater understanding, greater depth. But I felt after walking from Kanyakumari to Kashmir, and the way he understood, he made, then I said he has become more shallow.
8: You know, it was genuinely a first day, first show kind of perfect political storm for Vijay. What went through your mind when you saw it unfold?
9: I came into politics in 2007, and from then... Two decades.
8: Yeah, amazing.
9: And it was a tough journey for me. And sometimes I felt like giving up. Sometimes I feel like, why the hell I was in politics? I wish I could have such kind of smooth journey like Mr. Vijay. In that way, I said, okay, I was envious.
8: You have a good relationship with the BJP and especially with Prime Minister Modi.
9: This man is the future of our country. Hmm. And we need it.
3: Welcome, you're watching NDTV. I'm Aditi Bhardwaj, and let's take a look at the top stories that we are tracking here at this hour. After TMC MP Prakash Chigbarai quits in another blow for Mamata Banerjee, as Kalyan Banerjee also comes out in the open against Abhishek Banerjee, claiming that Abhishek Banerjee's arrogance is costing TMC its valuable members. Kalyan Banerjee also says that Mamata must choose between him and Abhishek Banerjee. Congress MP Rahul Gandhi's fresh attack on PM Modi, claiming that he has destroyed everything, sparks row. BJP slams Congress, lists PM Modi's achievements.

0: Starting off, it has been 5 hours since Abhishek Banerjee's date with the CID began, and now the hours are increasing, but no sign of Abhishek Banerjee coming out of the CID office in Kolkata, where he has been grilled into the forged signature case. The controversy, remember, erupted after a proposal seeking recognition of the Trinamool's Sovandeep Chattopadhyay as leader of opposition allegedly contained forged signatures of other MLAs. The proposal was allegedly drafted at a meeting at Mamata Banerjee's home. Two Trinamool MLAs, Ritabrata Banerjee and Sandeepan Saha, complained, calling the resolution manufactured and fabricated. They red-flagged 14 of the 70 signatures. After this, Abhishek Banerjee is now being grilled by the CID. My colleague Shreyashi, who has been tracking this story from the very beginning, is joining me. Shreyashi, what line of questioning must be, you know, right now he must be facing inside the CID office?
1: Well, when the CID served him a notice, they requested him to bring in the resolution book in which the signatures were made, because this entire incident unfolded at the party's central office in Kolkata, which is also Mamata Banerjee's residence. And the letter that was sent to the speaker was in Abhishek Banerjee's letterhead, who is the Trinamool Congress National General Secretary. And those signatures that were sent from there had been given by Abhishek Banerjee. So the CID essentially wants to understand how many MLAs were present, because they've already carried out videography as well as signature experts at these MLAs who had signed that resolution book. And the CID is, of course, cross-questioning Abhishek Banerjee as to which were the MLAs who were present and how many of them had signed, to ensure that they get the correct information and then they can continue with the investigation. This is the first time he has appeared. He reached the CID headquarters in Kolkata at around 5:50, and the questioning still continues.
0: Absolutely. Thank you so much, Shreyashi, for those details. Keep tracking the story, as we will be keeping the big focus on it. For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamata's staunch loyalists. Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee. Calling him arrogant, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamata Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamata Banerjee do, and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamata Banerjee? Sample the reactions.
2: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करते जा रहे हैं.
3: क्या मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
2: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
3: की, कोई टॉपिक में बात नहीं.
2: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
3: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
2: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
3: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ, एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलैबोरेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा, ये सबको
2: मालूम. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं?
3: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं
4: था. इट्स अ ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी. हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
5: Kalyan, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बैनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात को लोगों तक रख पाए, और सही माने में ममता बैनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी।
6: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
0: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Mano Gyalowal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
7: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
8: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
7: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
8: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
7: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा?
8: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
7: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
8: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
0: Breaking news is coming in at this hour. This is regards to the Middle East tensions, where Donald Trump, the US president, has once again said that he is cancelling any attack on Iran. Remember, he had just few hours before that said that he will be carrying out strikes on Iran after there was fresh tension between the two nations. Now, Trump has come out to say that talks were held with the top Iranian leadership and then he has decided to postpone any attack and in fact cancelling them tonight. No plan of any attack on Iran and Iranian posts. So my colleague Vishal Vivek is joining me with more details. Vishal, many surprises come with Donald Trump as US president. This is one among them.
9: Exactly, and this is a stunning U-turn. Like you rightly said, just a few hours ago he had said that he will bomb almost all the places in Iran. He had made some big claims that US will be taking over Kharg Island. Kharg Island is one of the most crucial areas that Iran has. 90% of Iran's oil passes through that tiny island. So that was a huge claim. People were wondering what kind of operation will he order? Will there be a ground operation? So now this sudden U-turn means there will be no action as far as Kharg Island is concerned, or any strikes will not be carried through. And this is one of the most stunning U-turns in the three months of the duration of the war so far. So we'll have to see how far this lull in fighting will be there, because negotiations have been going on as far as this whole scenario is concerned. At the same time, the attacks have been going on. So it's all been helter-skelter. We don't know how far this will go on. So we'll have to see what kind of negotiations are happening while this war theater is active.
0: Absolutely. Thank you so much, Vishal, for those details. We will be tracking it as West Asia tensions are not only are harmful for these two countries, but the world is paying a price for it. And among those countries, one country is India.

0: आपका रेजिग्नेशन लेटर मैंने देखा, आपके रेजिग्नेशन लेटर में आपने बहुत संक्षिप्त में लिखा, पर उसमें एक चीज आपने लिखी जिसमें आपने धन्यवाद दिया राज्यसभा के वाइस चेयर को, बट लेकिन उसमें एक भी लाइन ममता बनर्जी के बारे में नहीं थी, तृणमूल सुप्रीमो के बारे में नहीं थी, ऐसा क्यों?
1: मैं तो लेटर एड्रेस किया किसको, माननीय चेयरमैन को, जो हाउस के चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं एवं ऑनरेबल चेयरमैन को, और डिप्यूटी चेयरमैन जो है जो हाउस चलाते हैं, तो ऑब्वियसली तो ऑफिशियल लेटर है, तो ऑफिशियल लेटर में जो डिपार्टमेंटली वाइज लिखना चाहिए वही लिखा हूँ मैं।
0: ये बताइए कि आज कल्याण बनर्जी ने कहा है कि या तो वो या अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्या ये अब सभी सांसदों के सभी MLAs के साथ ये इस वक्त की स्थिति है, क्या अभिषेक बनर्जी कारण है जिस
1: मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं पहले भी बोला था मैं किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी पे कभी नहीं जाऊंगा।
0: एक मैसेज आप अगर ममता बनर्जी को इस चैनल इस शो के माध्यम से देना चाहेंगे तो वो क्या होगा?
1: नहीं दीदी, ऑनरेबल लीडर है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं अपना व्यक्तिगत राय रखा।
0: ठीक है प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन NDTV। दैट ऑफ कोर्स वाज द थर्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम द राज्यसभा फ्रॉम तृणमूल, दैट स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी इन राज्यसभा हैज नाउ श्रंक फ्रॉम 13 to 10, इवन एज देयर आर रिपोर्ट्स अबाउट remains to be seen whether that figure changes or not going forward.
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
3: Really?
2: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
5: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
6: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
7: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
8: It's also important that how they are reshaping the industries.
9: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
4: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
10: This is where the future shows up first. Conversations with the biggest names in tech and AI. Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360, real talk, real reviews, across the NDTV network.
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
1: कल्याण जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात को लोगों तक रख पाए और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट की।
2: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
3: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Galoiwal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
4: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
5: मेरा ख्याल है सब ठीक है और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
4: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
5: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
4: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा?
5: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
4: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
5: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया। और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूँ, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
3: Breaking news is coming in at this hour. This is regards to the Middle East tensions, where Donald Trump, the US president, has once again said that he is cancelling any attack on Iran. Remember, he had just few hours before that said that he will be carrying out strikes on Iran after there was fresh tension between the two nations. Now, Trump has come out to say that talks were held with the top Iranian leadership and then he has decided to postpone any attack and in fact cancelling them tonight. No plan of any attack on Iran and Iranian posts. So my colleague Vishal Vivek is joining me with more details. Vishal, many surprises come with Donald Trump as US president. This is one among them.
6: Exactly, and this is a stunning U-turn. Like you rightly said, just a few hours ago he had said that he will bomb almost all the places in Iran. He had made some big claims that US will be taking over Kharg Island. Kharg Island is one of the most crucial areas that Iran has. 90% of Iran's oil passes through that tiny island. So that was a huge claim. People were wondering what kind of operation will he order? Will there be a ground operation? So now this sudden U-turn means there will be no action as far as Kharg Island is concerned, or any strikes will not be carried through. And this is one of the most stunning U-turns in the 3 months of the duration of the war so far. So we'll have to see how far this lull in fighting will be there, because negotiations have been going on as far as this whole scenario is concerned. At the same time, the attacks have been going on. So it's all been helter-skelter. We don't know how far this will go on. So we'll have to see what kind of negotiations are happening while this war theater is active.
3: Absolutely. Thank you so much, Vishal, for those details. We will be tracking it as West Asia tensions are not only are harmful for these two countries, but the world is paying a price for it. And among that, and among those countries, one country is India, where the tragic incident has been reported from the Strait of Hormuz involving Palau-flagged vessels MT Setabello, where 3 Indian seafarers initially reported missing have now been confirmed dead after their bodies were recovered and identified. The deceased have been identified as Aditya Sharma, a deck cadet, Shivanand Chaurasia, an engine fitter, and chief engineer Patnala Suresh. A video also surfaced showing the Indian crew issuing a distress call after it was hit by a US missile off Oman, saying the ship was on fire and it is sinking. The MEA has once again condemned the attack while informing that a strong protest is being lodged through diplomatic channels. but the families remain inconsolable. Take a look.

0: For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamta's staunch loyalists, Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee. Calling him arrogant, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamta Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamta Banerjee do and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamta Banerjee? Sample the reactions.
1: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करने करते जा रहे हैं.
2: क्या भाई, किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
1: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
2: की. आप कोई टॉपिक में बात नहीं.
1: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
2: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
1: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
2: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलैबोरेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम.
1: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं.
2: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं.
3: ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी, हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
4: Kalya, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं. शायद कल्याण बनर्जी जी को भी

0: अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए, और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी।
1: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
2: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Yalowal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
3: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
4: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
3: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
4: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूं। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भेजा के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबको पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाओ।
3: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा?
4: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
3: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
4: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
6: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: Landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars, and that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pawan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
9: I think somehow they're scared, otherwise there is no need for them to deny.
2: Welcome, you're watching NDTV. I'm Aditi Bhardwaj, and let's take a look at the top stories that we are tracking here at this hour. After TMC MP Prakash Chigbarai quits in another blow for Mamata Banerjee, as Kalyan Banerjee also comes out in the open against Abhishek Banerjee, claiming that Abhishek Banerjee's arrogance is costing TMC its valuable members. Kalyan Banerjee also says that Mamata must choose between him and Abhishek Banerjee. Congress MP Rahul Gandhi's fresh attack on PM Modi, claiming that he has destroyed everything, sparks row. BJP slams Congress, lists PM Modi's achievements. TMC MP Abhishek Banerjee continues to face trouble. CID quizzes Mamata's nephew in the forged signature case. NCW directs DGP of Haryana to take action in Gurugram comedy show incident after rupees 370 biryani comment was made. NCW summons Praneet More and Himanshu Jangra on June 22. Three Indian sailors who went missing after US attack on tanker off Oman coast killed. Family members seek MEA's help. Sailor Aditya's father speaks to NDTV, calls attack a war crime. US President Donald Trump has announced fresh attack on Iran, says Iran will be hit very hard tonight. This comes after fresh fire was exchanged between the two nations after US helicopter was downed by Iran.

0: center. Now the hours are increasing, but no sign of Abhishek Banerjee coming out of the CID office in Kolkata, where he has been grilled into the forged signature case. The controversy, remember, erupted after a proposal seeking recognition of the Trinamool's Sovandeep Chattopadhyay as leader of opposition allegedly contained forged signatures of other MLAs. The proposal was allegedly drafted at a meeting at Mamata Banerjee's home. Two Trinamool MLAs, Ritabrata Banerjee and Sandeepan Saha, complained, calling the resolution manufactured and fabricated. They red-flagged 14 of the 70 signatures. After this, Abhishek Banerjee is now being grilled by the CID. My colleague Shreyashi, who has been tracking this story from the very beginning, is joining me. Shreyashi, what line of questioning must be, you know, right now he must be facing inside the CID office?
1: Well, when the CID served him a notice, they requested him to bring in the resolution book in which the signatures were made, because this entire incident unfolded at the party's central office in Kolkata, which is also Mamata Banerjee's residence. And the letter that was sent to the speaker was in Abhishek Banerjee's letterhead, who is the Trinamool Congress National General Secretary. And those signatures that were sent from there had been given by Abhishek Banerjee. So the CID essentially wants to understand how many MLAs were present, because they've already carried out videography as well as signature experts at these MLAs who had signed that resolution book. And the CID is, of course, cross-questioning Abhishek Banerjee as to which were the MLAs who were present and how many of them had signed, to ensure that they get the correct information and then they can continue with the investigation. This is the first time he has appeared. He reached the CID headquarters in Kolkata at around 5:50, and the questioning still continues.
0: Absolutely. Thank you so much, Shreyashi, for those details. Keep tracking the story, as we will be keeping the big focus on it. For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamata's staunch loyalists. Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee, calling him arrogant. Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamata Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamata Banerjee do, and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamata Banerjee? Sample the reactions.
2: राज्यसभा एमपी प्रकाश बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करते जा रहे हैं. क्या
3: मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
2: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
3: की, कोई टॉपिक में बात नहीं.
2: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
3: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
2: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
3: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कॉलिब्रेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको
2: मालूम. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं?
3: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं.
4: ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी. हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says, thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
5: Kalya, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बैनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। और सही माने में ममता बैनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी।
6: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
0: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Yalowal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports doing the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
7: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
8: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
7: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
8: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भेजा के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबको पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाओ।
7: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा? हा, हा, हा।
8: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
7: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?

0: protest is being lodged through diplomatic channels.
1: प्रियानंद हमारे बहनों ही हैं, शिप पे गए थे और वहीं पे जो तिरकोली युद्ध चल रहा है उसी में मिसाइल गिरा है और 3 लोग लापता हैं, जिसमें हमारे बहनों ही भी हैं, शिवानंद चौरसिया जो सुरौली के रहने वाले हैं, 2 बच्चे हैं। तो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, शिप पे हैं।
2: पहले काम करते थे दुबई, दुबई से बम्बई गई ना, अब बम्बई से जहाज पे गई बानी।
3: अच्छा, कहाँ पे, कहाँ गए थे?
2: अब पता नहीं, उमाम गए ना कि कहाँ गए ना, हमके अंदाज नहीं के कहाँ कहाँ गाड़ी 6 महीना से चलती है।
3: अच्छा, जहाज पानी वाली।
2: हाँ,
3: क्या जानकारी मिला है आपको?
2: लड़का फोन करना कि भैया का जहाज के ऊपर बम गिरे, भैया का पता नहीं बा।
3: अच्छा,
4: तो
2: अरे वो आये हम जानते हैं 8-9 बजे फोन। हाँ, इतने पर दिन में।
3: अच्छा, कहाँ है वो भैया, कहाँ रहते हैं? मतलब
2: छोटे लड़का का काला दुबई रहते हैं।
3: अच्छा, दुबई काम करते हैं।
2: हाँ,
3: और बड़े लड़के आप तो वहाँ?
2: हाँ।
4: नाम क्या होगा?
2: नाम शिवानंद।
5: मंगलवार को शाम को फोन की आया था, सब कुछ अच्छा था, और बुधवार सुबह 7 बजे आता था फोन, शाम दोपहर 1 बजे फोन आता था, शाम को 9 बजे आता था। सिंगापुर पहले गए थे, बेल्डर कंपनी से गए थे, दिसंबर में 5 दिसंबर को गए हैं।
3: क्या जानकारी वहां से मिली है?
5: वो नहीं फोन किया, हमारे देवर फोन के जे भाभी भैया जाजिया बम
6: CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region.
0: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
9: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
10: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
11: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
12: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
13: It's also important that how they are reshaping the industries.
14: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
9: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards, coming soon.
15: This is where the future shows up first. Conversations with the biggest names in tech and AI. Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360, real talk, real reviews, across the NDTV network.
16: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: across the country.
1: He has tracked the pulse of power.
2: For now, the rebellion fervor in TMC has hit another one of Mamta's staunch loyalists, Lok Sabha MP Kalyan Banerjee, who has represented TMC in various matters in the court, has finally spoken against Abhishek Banerjee. Calling him arrogant, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamta Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamta Banerjee do and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamta Banerjee? Sample the reactions.
3: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करने करते जा रहे हैं.
4: क्या मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
3: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
4: की, आप कोई टॉपिक में बात नहीं.
3: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
4: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
3: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
4: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कॉलिब्रेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम.
3: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी हैं कहीं ना कहीं?
4: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं.
5: ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी, हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done.
6: Kalya, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं. शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए. और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी.
7: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
2: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Manoj Galoiwal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
8: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी. आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ. सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
9: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा. आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है.

0: लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व तो बना हुआ है और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
1: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
0: मेरा मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूं। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भेजा के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3 लाइन व्हिप अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
1: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। कोई कारण है, कोई मंशा?
0: आप जानते हैं, मैं अपनी अस्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना, मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
1: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
0: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं, उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे, लड़ाई लड़के
1: जी
0: उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई, और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया, और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।

0: There were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs, but so far Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
1: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी. आज की सबसे मनोज क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
2: मेरा ख्याल है सब ठीक है और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है. मुझे लगता है आपको पता होगा. जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है.
1: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
2: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूं. जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था. सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था और देश में एक ही उपचुनाव था. वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है. तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी. तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं. इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं.
1: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी, कोई कारण है, कोई मंशा?
2: आप जानते हैं मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं. मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं. और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के हैं और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है. मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया.
1: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
2: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है. क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going. मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है. हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं. उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है. उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे, लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
0: Breaking news is coming in at this hour. This is regards to the Middle East tensions, where Donald Trump, the US president, has once again said that he is cancelling any attack on Iran. Remember, he had just few hours before that said that he will be carrying out strikes on Iran after there was fresh tension between the two nations. Now, Trump has come out to say that talks were held with the top Iranian leadership and then he has decided to postpone any attack and in fact cancelling them tonight. No plan of any attack on Iran and Iranian posts. So my colleague Vishal Vivek is joining me with more details. Vishal, many surprises come with Donald Trump as US president. This is one among them.
3: Exactly, and this is a stunning U-turn. Like you rightly said, just a few hours ago he had said that he will bomb almost all the places in Iran. He had made some big claims that US will be taking over Kharg Island. Kharg Island is one of the most crucial areas that Iran has. 90% of Iran's oil passes through that tiny island. So that was a huge claim. People were wondering what kind of operation will he order. Will there be a ground operation? So now this sudden U-turn means there will be no action as far as Kharg Island is concerned, or any strikes will not be carried through. And this is one of the most stunning U-turns in the 3 months of the duration of the war so far. So we'll have to see how far this lull in fighting will be there, because negotiations have been going on as far as this whole scenario is concerned. At the same time, the attacks have been going on. So it's all been helter-skelter. We don't know how far this will go on. So we'll have to see what kind of negotiations are happening while this war theater is active.
0: Absolutely. Thank you so much, Vishal, for those details. We will be tracking it as West Asia tensions are not only are harmful for these two countries, but the world is paying a price for it. And among that, and among those countries, one country is India, where the tragic incident has been reported from the Strait of Hormuz involving Palau-flagged vessels. MT Setabello, where 3 Indian seafarers initially reported missing have now been confirmed dead after their bodies were recovered and identified. The deceased have been identified as Aditya Sharma, a deck cadet, Shivanand Chaurasia, an engine fitter, and chief engineer Patnala Suresh. A video also surfaced showing the Indian crew issuing a distress call after it was hit by a US missile off Oman, saying the ship was on fire and it is sinking. The MEA has once again condemned the attack while informing that a strong protest is being lodged through diplomatic channels. But the families remain inconsolable. Take a look.
4: Priyanand, our brothers, ship gaye the, aur wahin pe jo tirkoli yudh chal raha hai, usi mein missile gira hai, aur 3 log lapatte hain, jisme hamare bhanoi bhi hain, Shivanand Chaurasia, jo Surauli ke rehne wale hain, 2 bacche hain. वो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, सिप पे हैं।
5: पहले काम करते थे दुबई, हाँ। दुबई से बम्बई गए ना, अब बम्बई से जहाजी पे गए बाना।
6: अच्छा, कहाँ पे, कहाँ गए थे?
5: अब पता नहीं, उमाम गए ना कि कहाँ गए ना, ये हम क्या जानने के कहाँ कहाँ, वो गाड़ी 6 महीना से चलती है।
6: अच्छा, जहाज पानी वाली।
5: हाँ।
6: क्या जानकारी मिला है आपको?
5: लड़का फोन करना कि भैया का जहाज के ऊपर बम गिरे, भैया का पता नहीं बा।
6: अच्छा,
7: तो
5: अरे वो आए, हम जानते हैं 8-9 बजे को। हाँ, इतने पर दिन में।
6: अच्छा, कहाँ है वो भैया, कहाँ रहते हैं? मतलब जो
5: छोटे लड़का का काला दुबई रहते हैं।
6: अच्छा, वो दुबई काम करते हैं।
5: हाँ,
6: और बड़े लड़के आप तो वहाँ।
7: नाम क्या?
5: शिवानंद।
7: मंगलवार को शाम को फोन आया तो सब कुछ अच्छा था, और बुधवार सुबह 7 बजे आता था फोन, शाम दोपहर 1 बजे फोन आता था, शाम को 9 बजे आता था। सिंगापुर पहले गए थे।